की जो तेरे जूते खोलने में अपना स्वर्ग समझती है, मगर तू तो उस औरत की पूजा कर रहा है जिसके जूते तुझे खोलने पड़ते हैं। हठात हठात আমার জীবনের আকাশে উঠল ঝড়, ঝড়না ঝড়না কর, আয় কর আমায় করল দেশান্তর সংসারে।

जी हाँ दोस्तों, 107 FM रेनबो नॉन स्टॉप गपशप में स्वागत करने आ गई है आपकी दोस्त सविता। जी हाँ, वादा किया था कि 4 अगस्त को मैं आने वाली हूँ और आ गई, और ढेर सारी बातों के साथ आज हम मनाने वाले हैं हमारे लेजेंडरी गायक किनका, ये तो आप समझ ही जाएंगे।

जी हाँ दोस्तों, थोड़े से आप पजल में आ गए ना। जी हाँ, पहेलियां बुझाने का मुझे थोड़ा सा शौक है। कहानी में है ट्विस्ट। जी, ये जो गीत सैयारा आपने सुना, और मैं बात कर रही हूँ कि आज हम बात कर

0: हमारे लीजेंडरी गायक का आज है जन्मदिन, तो शुरुआत करते हैं उन्हीं के गीत से। तो दोस्तों, लेकिन ये गीत तो मैंने उनकी आवाज़ में नहीं सुन पाया। जी हाँ, ओरिजिनली उन्हीं की आवाज़ में है ये गीत जो आपने सुना। सही आ रहा, तो बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चलेंगे हम अगले सेगमेंट की ओर।
1: आज के दिन,
0: आज के दिन के सेगमेंट की पहले करेंगे बात। माना जाए तो किसी भी देश की जमीन है इतिहास। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति सभ्यता को खुद में समेटे होता है इतिहास। गर्व और गौरव का स्तंभ है इतिहास। जय पराजय की गाथा है इतिहास। अतीत को सजोए रखने वाला है इतिहास। और ऐसे इतिहास को समझते रहें, जानते रहें, पढ़ते रहें, सुनते रहें, यही तो है हमारी कोशिश। तो आज 4 अगस्त के दिन वो कौन सी घटनाएं घटी जो हमेशा के लिए हो गई इतिहास में दर्ज। दोस्तों, 4 अगस्त का दिन ऐतिहासिक घटनाओं से भरा पड़ा है, जिसमें विश्व इतिहास के विभिन्न पहलुओं को आकार देने में मदद की है। 1789 में इसी दिन फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राष्ट्रीय संविधान सभा ने अगस्त अध्यादेश पारित करके सामंतवाद और कुलीन वर्ग और पादरियों के कर विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया था। अन्वेषण के क्षेत्र में 4 अगस्त 1821 को फेबियन गॉटलीब वॉन वेलिशॉशेन के नेतृत्व में रूसी अटलांटिक अभियान की वापसी हुई, जो अटलांटिका का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति बने। यह तिथि एक दुखद घटना को दर्शाती है, क्योंकि इसी दिन 1944 में गेस्टापो द्वारा एनी फ्रैंक और उनके परिवार को गिरफ्तार किया गया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध की क्रूरता की एक मार्मिक याद दिलाता है। इसके अतिरिक्त 4 अगस्त 1790 को संयुक्त राज्य राजस्व कटर सेवा की स्थापना हुई थी। और बात कर रही हूँ मैं 4 अगस्त 1929 को जन्मे थे, जी हाँ, भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार। वे एक कुशल अभिनेता के रूप में जाने जाते थे। हिंदी फिल्म उद्योग में उन्होंने बंगाली, हिंदी, मराठी, असमिया, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया और उर्दू सहित कई भारतीय भाषाओं में गीत गाए। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक और 8 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते। इस श्रेणी में उनके सबसे अधिक फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। किशोर कुमार ने भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग में अपने संघर्ष की शुरुआत की, जब उनके भाई अशोक कुमार एक सफल सितारे के रूप में स्थापित हो चुके थे। दोस्तों, किशोर कुमार ने पार्श्व गायन के क्षेत्र में मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, तलत महमूद, मन्ना डे जैसे दिग्गज गायकों का, जब उस समय में दबदबा था, उस समय में मुकेश कुमार ने अपना स्थान बनाया। दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, बलराज साहनी, गुरुदत्त और रहमान जैसे कलाकार भी उस समय में मौजूद थे। इन दोनों ने 1961 में बनी फिल्म झुमरू में भी एक साथ काम किया। फिल्म का निर्माण किशोर कुमार ने किया। किशोर कुमार की अनकही अनसुनी इतनी दास्तान है कि एक क्या कई कई प्रोग्राम दोस्तों हमें करने होंगे, लेकिन आज, जी हाँ, आज हम उनको याद करेंगे। 11:10 कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद में, तो हम करने ही वाले हैं, लेकिन आज हम नॉन स्टॉप गपशप में भी उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और किशोर कुमार की कोई यदि अनूठी दास्तान आपके पास है तो वो साझा कर सकते हैं हमारे साथ। उन्हें आप कैसे याद करते हैं बता सकते हैं। 2213-1341 पर जुड़ सकते हैं आपकी दोस्त सविता के साथ कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप में, बात कर सकते हैं आपके गायक कलाकार किशोर कुमार की।

0: जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है नॉन स्टॉप गपशप पर। आपकी दोस्त सविता के साथ बात कर रहे हैं हम किशोर कुमार की। बॉलीवुड के 5 सबसे लोकप्रिय हस्तियों में शामिल हैं किशोर कुमार। जन्म हुआ मध्य प्रदेश के खंडवा में 4 अगस्त 1929 को और 13 अक्टूबर 1987 को उनका हुआ मृत्यु हो गई। दोस्तों किशोर कुमार के स्वभाव में फक्कड़पन कूट कूट कर भरा हुआ था। बेखौफ थे, पूरी जिंदगी को उन्होंने चिंता नहीं की और मस्ती से गुजार दिया। हरफन मौला थे, हम ये सभी जानते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक दोस्त, तो वो क्या जानते हैं और क्या हमारे साथ साझा करना चाहते हैं ये उनसे सुनते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, आपका नाम बताइए।
1: सविता जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: कैसे हैं आप बताइए।
0: मैं तो एकदम बढ़िया हूँ और आप लोगों से बात करती हूँ तो और भी अच्छी हो जाती हूँ। आप अपना नाम बताइए तो और भी अच्छी हो जाऊंगी।
1: मैं श्याम कुमार चंचल बोल रहा हूँ, सांकराइल मानिकपुर से।
0: जी श्याम कुमार चंचल जी, कैसे हैं आप, काफी दिनों के बाद आए हैं।
1: ऐसा तो है नहीं दीदी, मैं आता रहता हूँ और आपको मैं थोड़े दिन के बाद पा रहा हूँ, इसीलिए आपकी भी कमी महसूस होती है।
0: अच्छा, लेकिन मैं तो आती रहती हूँ।
1: आप आइए, बराबर आइए। और आप तो, आपका तो हमने यहाँ पे ना पूरा चारों तरफ में शोर मचाया हुआ, सब कोई जान गए आपको रानी मुखर्जी के नाम से।
0: अरे वाह, चलिए आपने मुझे फेमस कर दिया।
1: बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम, आपसे बातें करके भी बहुत अच्छा लगता है
0: जी।
1: और पीछे गीत तो आप बहुत सुंदर सुंदर बजा रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी। शुक्रिया आप।
1: आज आज तो किशोर कुमार जी का जन्मदिन है और किशोर कुमार के लिए मैं क्या कहूँ, वो इतने बड़े कलाकार हैं। अरे वो तो पेंसिल की बात करते थे, आपने पढ़ाया भी है, पेड़ों से बात करते थे, बहुत चुलबुले स्वभाव के थे और जिद्दी भी थे वो। अगर यहाँ पे उनका गीत बजाना रेडियो पे बंद हुआ था एक बार, तो उनने विदेशों में जाकर के प्रोग्राम करके आया, लेकिन कभी बैठे नहीं रहे वो
0: जी।
1: तो उनके लिए मैं ये कहूँगा, अगर आपके पास कोई गीत होगी तो आपके अच्छे बज रहे हैं, लेकिन मैं एक गीत आपसे कहना चाहूंगा, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, ये अगर बजाएं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे।
0: ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ नरेंद्र चंचल जी। और आप सॉरी माफ करिए, श्याम सुंदर चंचल जी, मैं नरेंद्र चंचल जी गलती से कह दी आपको। नरेंद्र चंचल जी भी एक गायक कलाकार हुए हैं।
1: हाँ हाँ, नरेंद्र चंचल भी हैं, माता की भेंट गाते हैं वो।
0: बिल्कुल जी, शुक्रिया।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े श्याम सुंदर चंचल जी और उन्होंने उनके गीत की हमसे फरमाइश की है, तो हम कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन तब तक सुनवाते हैं एक और गीत।

0: दोस्तों किशोर कुमार फक्कड़ ही नहीं थे, बेखौफ भी थे और जिंदगी की जरा भी चिंता नहीं थी। मूड सही हो तो पलभर में गीत रिकॉर्ड कर देते और मूड यदि नहीं है तो फिर आप जितना करिए वो यदि नहीं गाने वाले हैं तो नहीं गाएंगे। दोस्तों 1962 की फिल्म हाफ टिकट का गीत आके सीधी लगी दिल पे जैसी को किशोर कुमार ने मेल और फीमेल दोनों ही आवाज़ों में गाना गाया। यह गीत एक बार में ही रिकॉर्ड कर लिया गया था और ये सुपरहिट गीत साबित हुआ। लता मंगेशकर किसी कारण से रिकॉर्डिंग पर नहीं आ पाई तो बोले मैं ही गा देता हूँ फिर मेल और फीमेल आवाज़ में, और बस ये एक प्रयोग था और ये प्रयोग हुआ सफल। किशोर कुमार के इतने अनगिनत किस्से हैं कि हम एक के बाद एक कितना भी हम आपके साथ साझा करते रहें वो ख़त्म होने वाले नहीं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक दोस्त, तो देखें वो क्या कहते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं शोभिक शौका बोल रहा हूँ, दीदी कस्बा से।
0: शोभिक जी, जी हमारे रेगुलर कॉलर है, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में जी।
1: थैंक यू दीदी,
0: बताइए
1: तो आप जो किशोर कुमार के बारे में जो बोल रहा है।
0: हाँ।
1: हम लोग तो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग जेनरेशन हम लोग किशोर कुमार के बारे में हम लोग बहुत सुनना चाहते है। देखिए दीदी, किशोर कुमार तो गाना गा के तो हम लोग का जो मन तो जीत लिया। उसके साथ जो किशोर कुमार ने जो एक एक चलचित्र मूवी में अभिनय किया था ना, बहुत अच्छा लगता था। इतना कॉमेडी रोल किया था, बहुत अच्छा लगता था। जैसे चलती का नाम गाड़ी जो हुआ वो बहुत बहुत अच्छा सा मूवी था। वो बेंगलोर में अभिनय किया था, बहुत अच्छा लगा था। और गाना जो बोलिए दीदी, मैं बोलूंगा सैड सॉन्ग बोलिए, रोमांटिक सॉन्ग बोलिए, जो भी सॉन्ग गाता था आवेगपूर्ण गाता था। और हम लोग का जो मन की जो बात होता है ना वो किशोर कुमार ने गाने के साथ बोल देता था, चौक से जो आंसू निकल जाता था दीदी, बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि हम लोग जब एक अकेले में जब घर में रहते तो किशोर कुमार के गाना छोड़ दो और कुछ नहीं चाहिए, बस
0: सही बात है,
1: आपको एक मूड स्विंग कर देगा।
0: बिल्कुल
1: मैं बोलूंगा दीदी।
0: तो आपको किशोर कुमार का कौन सा गाना है जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
1: ओ दीदी, मानना दे के साथ एक गाना था शोले फिल्म का, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे,
0: शोले फिल्म
1: बहुत
0: का
1: अच्छा लगता था दीदी।

0: शोले फिल्म का। जी जी जी, तो शोभिक जी आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम किशोर कुमार की बातें ऐसी करते रहेंगे, ठीक है?
1: थैंक यू।
0: तो हमारे साथ शोभिक जी जुड़े, और ये बात सही है कि वो एक ऐसे कलाकार हैं जो हर उम्र के लोगों को पसंद आते हैं, उनके सबके बीच में वो लोकप्रिय हैं। और अभी अभी बात की शोभिक जी ने चलती का नाम गाड़ी फिल्म का, तो ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें ये तीनों भाई यानी अशोक कुमार, किशोर कुमार, अनूप कुमार तीनों ने अभिनय किया था, और ये एक जबरदस्ती कॉमेडी फिल्म थी। तो अशोक किशोर कुमार के साथ साथ उनके जो दोनों भाई थे वो भी इसी तरह से बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर थे, जैसे कि किशोर कुमार। तो अभी हमारे एक दोस्त ने जिंदगी हंसने गाने का नाम के लिए फरमाइश की थी, तो वो गीत तो सुनवाना ही होगा।

जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। यूँ तो किशोर कुमार की ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव आए, ऐसा नहीं कि उनकी ज़िंदगी खुशियों से ही भरी थी, दुख भी उनकी ज़िंदगी में थे, लेकिन दोस्त उन्होंने अपनी दुखों को भुलाते हुए, अपने आप को उसमें ढालते हुए उन्होंने ज़िंदगी को एक नए तरीके से जिया। 1976 में राजेश खन्ना की महबूबा फिल्म का सुपरहिट गाना मेरे नैना सावन भादो को किशोर कुमार ने गाया था। पहले इस गीत को मोहम्मद रफ़ी गाने वाले थे, लेकिन बाद में राजेश खन्ना

0: ने कहा कि किशोर कुमार से ये गाना गवाया जाए। और आई थिंक मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि ये गीत उनका पहला गीत था जो उन्होंने राजेश खन्ना के लिए गाया था। दोस्तों हम ऐसी ही और बातों के साथ जुड़े रहेंगे नॉनस्टॉप गपशप पर। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और कॉलर, देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो हेलो हेलो, लगता है किसी कारण से उनकी फ़ोन लाइन कट चुकी है, तो हम गीत सुनवाएंगे। अभी अभी शौविक जी ने कहा था कि उन्हें किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाज़ में एक गीत बहुत अच्छा लगता है, तो चलिए उनकी उनको भी खुशी थोड़ी सी दे दी जाए।
1: एक

हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि किशोर कुमार के साथ हम सबकी दोस्ती आज तक बरकरार है। भले ही वो आज हमारे साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने गीतों के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए, अपने

0: आपका नाम क्या है? हाँ आपका नाम बताइए बताइए। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, आप थोड़ा अपने पहले फोन कॉल फोन से थोड़ा दूर हो जाइए, आवाज गूंज रही है। हेलो, वो हमारे साथ जुड़े थे लेकिन किन्हीं कारणों से उनकी लाइन कट चुकी है दोस्तों, तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अक्सर ऐसा होता है हम जो हैं उसे छोड़कर कुछ और हो जाना चाहते हैं, हम ये जानने में मेहनत ही नहीं करते कि आखिर हमारी मिट्टी कौन सी है, लेकिन जो जान जाते हैं कि उसके भीतर क्या सामर्थ्य है तो वो फिर कमाल कर जाते हैं, जैसे किशोर कुमार ने किया। बिल्कुल दोस्तों, इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है किशोर कुमार का नाम। लेकिन किशोर कुमार गा सकते हैं इस बात को जाना था उनके बड़े भाई दादा बुनी यानी अशोक कुमार ने। उन्हें ये कॉन्फिडेंस था कि एक दिन किशोर कुमार गा सकेंगे, तो उन्होंने उनको एक दिन हारमोनियम लाकर के खरीद कर लाकर दिया और ये कह दिया कि अब तुम खूब गाओ और बजाओ, और किशोर कुमार खुशी से झूम उठे। दोस्तों किशोर कुमार एक जो गायक थे, जो उस समय के बेताज बादशाह थे गायक, उनको अपना गुरु मानते थे। कौन थे वो बताऊंगी, लेकिन पहले सुनवाऊंगी एक गीत। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कॉलर, तो उनको ऑन एयर तुरंत ले लेते हैं। हेलो हेलो
2: हेलो,
0: आप कौन बोल रहे हैं?
2: हेलो,
0: हाँ बोलिए, आप कौन बोल रही हैं? हाँ मैं सुन पा रही हूँ, बोलिए।
2: हेलो,
0: हाँ मैं सुन पा रही हूँ, आप बोलिए अपनी आवाज।
2: हेलो,
0: लगता है ये हमारी आवाज़ को सुन नहीं पा रही। और
2: हेलो
0: हेलो, हाँ मैं सुन पा रही हूँ आपकी आवाज़, लेकिन आप कुछ सुन नहीं पा रहे क्या हमें?
2: हेलो,
0: तो दोस्तों उनको कुछ प्रॉब्लम है, आइए हम सुनवाते हैं आपको एक गीत।

0: जी हाँ, किशोर कुमार थे जिन्होंने छुआ था सबके मन को और आत्मा में बस गए थे। जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक और कॉलर, हम उनकी बात सुने अपनी बात ज्यादा ना कहते हुए। हेलो
1: हेलो,
2: गुड मॉर्निंग सविता जी।
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बताइए अपना नाम।
2: मैं मनोरुद्दीन लश्कर बात कर रहा हूँ, दक्षिण संक्रैल हावड़ा से।
0: मनोरुद्दीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, आप हमारे साथ जुड़े, अच्छा लगा, बताइए।
2: हाँ, हमारे फेमस सिंगर एक्टर सूर्या का जादूगर लिरिसिस्ट किशोर कुमार का जन्मदिन है आज, इसलिए ढेर सारी मुबारक जानना चाहता हूँ
0: जी।
2: और उसका गाना कौन सा छोड़ के कौन सा बताऊं, ये तो मैं पागल हो गया, क्योंकि उसका हर गाना हमारे लिए बहुत फेमस है, तो एक तो गाना चूज करना चाहिए और आपसे शुक्रिया अदा करना चाहिए सबसे पहले इतना फेमस एक्सेलेंट प्रोग्राम प्रेजेंटेशन के लिए।
0: जी शुक्रिया आपका।
2: और आराधना फिल्म से मेरे सपनों की रानी कब आएगी थी, ये ऑल टाइम हिट सॉन्ग जो है हमारे मन में दिल में छू जाता है, ये गाना प्लीज सुना दीजिए।
0: जी मैं कोशिश करती हूँ। और आप हमारे साथ जुड़े और अपने प्रिय कलाकार के बारे में आपने दो शब्द कहे, इसके लिए हम आपके आभारी हैं मनोरुद्दीन जी।
2: थैंक यू मैम,
0: थैंक यू।
2: खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे,
0: बिल्कुल
2: आता रहे। थैंक यू मैम
0: जी। तो हमारे साथ मनोरुद्दीन जी जुड़े और उन्होंने एक गीत की फरमाइश की है, मेरे सपनों की रानी, और सच में ये ऑल टाइम फेवरेट है सभी का। किशोर कुमार एक ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आप सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में कभी भी सुन सकते हैं। और मैंने बात की थी कि उनके गुरु वो किसे मानते थे, ये बताऊंगी, लेकिन पहले ये गीत।

0: जी हाँ, समय बहुत कम रह गया है और हमारे साथ अंतिम कॉलर जुड़ चुके हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका नाम बताइए।
1: जी, मैं अनुराधा नाग बोल रही हूँ। मैं उनके एक व्यक्तित्व के पहलू के बारे में बताना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल,
1: जैसे वो बहुत उनका सुनाम भी था, लेकिन एक बदनाम भी उनके साथ जुड़ा हुआ था कि वो बहुत पैसे के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे। विदाउट हाफ पेमेंट वो लिए गाना अपना कोई भी एग्रीमेंट वो नहीं करते थे। और इस मामले में एक घटना ऐसा भी हुआ था कि अशोक कुमार जी कोई फिल्म उनका वो प्रोड्यूस कर रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे। तो उनको कुछ पैसे की किल्लत आ गई थी, तो उन्होंने बोला था ठीक है, हाफ पेमेंट अभी मैं देता हूँ, फिर बाद में दूंगा जैसे जैसे होगा आगे बढ़ेगा। तो वो शायद नहीं वो दे पाए थे वो पेमेंट, तो उन्होंने सोचा होगा कि चलो भाई अपना भाई है, उनको बाद में देंगे, बाद में पहले दूसरों को दे लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया किशोर कुमार जी ने, कि जिस दिन उनका शूटिंग था, उनका डेट था सारा, तो वो क्या किए कि दरवाजे तक आए स्टूडियो के और उसके बाद घूम के चले गए, वो नहीं एंटर नहीं किया अंदर। तो बाद में अशोक कुमार जी घर जाके तो उनके साथ बहुत गुस्सा किए, तो वो बोले कि तुमने भी मेरा पेमेंट नहीं दिया था, हाफ पेमेंट दिया था तो मैं भी हाफ दरवाजे तक गया, लौट के चला आया, जब फुल पेमेंट दोगे तो मैं काम कर लूंगा। तो लेकिन वो सचमुच मतलब

0: हम जब पहले ये बात मैंने भी सुना था रेडियो पे, तो मेरे को भी बहुत आश्चर्य भी लगा था कि वो पैसे के मामले में इतने पर्टिकुलर थे। वो उनको हार्डशिप झेलना पड़ा था, लोगों से बहुत मतलब बेवफाई मिली थी, इसीलिए वो उस तरह के उनके नेचर हो गया था, उनका वो पॉलिसी उन्होंने बना लिया था। लेकिन वो मैंने सुना है कि वो सत्यजीत रे के फिल्म में, जितने भी बंगाली फिल्म में उन्होंने गाया है उनका, विदाउट एनी मैंने पेनीलेस उन्हें एक भी पैसा उन्होंने नहीं लिया है।
1: तो अनुराधा जी,
0: उनका फिल्म बहुत बजट उनका ये रहता था, टाइट रहता था, तो और वो तो उनके मामा ससुर भी लगते थे रिश्ते में, तो उन्होंने उनका एक भी पैसा उन्होंने नहीं लिया था एक भी गाने का। और एक और मजेदार किस्सा बताती हूँ, मैंने ये सुना था कि कोई प्रोड्यूसर उनको पैसा नहीं दिए थे, हाफ पैसा या 1/4 दिए थे, तो बहुत दिन तक उनको वो खुन्नस पाले हुए थे। तो एक दिन उनका फिर से कॉल आया कुछ साल बाद कि वो फिर से कोई फिल्म बना रहे हैं और इनको वो लेना चाहते हैं, तो वो तय कर लिए थे कि उनको नहीं करना है ये फिल्म, लेकिन उनको उन्होंने झूठ मूठ का अपने घर बुलाया, बुला करके उनको उनके घर, उनका घर भी बहुत शानदार है, मतलब आपको लगेगा कहीं पानी है लेकिन एक्चुअली में वो फर्श है, कहीं आपको अलमारी लगेगा लेकिन वो दरवाजा है बट वो अलमारी नहीं है, और कहीं ठीक उल्टा होगा। तो उन्होंने उसको उनको एक अलमीरा में बंद कर दिया ये कहते हुए कि आप ये इस रूम में जाइए, हम आपको आके अटेंड करते हैं।
1: तो अनुराधा जी, आपने सच में बड़ी,
0: दरवाजा नहीं था एक रूम
1: जी जी। अभी हमारे पास एकदम समय 2 मिनट का रह गया है, तो अभी फिलहाल आपने इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई अनुराधा जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ जुड़ी थी हमारी एक कॉलर और उन्होंने इंटरेस्टिंग कुछ बातें बताई, और अब फिलहाल आपकी दोस्त सविता आपसे लेगी इजाज़त, मुलाकात होगी ऐसे ही 11 तारीख को। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, और अंतिम गीत आपके लिए पेश करते हुए चलती हूँ मैं, और आप मुस्कुराते रहिए।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

जी हाँ दोस्तों, ऐसा कभी हुआ नहीं, जो भी हुआ खूब हुआ। 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक के तार हम जोड़ते हैं। साथ ही हम जोड़ेंगे आपके साथ एक ऐसे इंसान को जो प्लेबैक सिंगर के साथ साथ लेखक, म्यूजिक कंपोजर और भी क्या क्या, यानी खुद में एक इंडस्ट्री के समान है। उनका जन्मदिन है और उनका नाम बताने की जरूरत है क्या? जी हाँ, किशोर कुमार। दुनिया जिसे जानती है एक फूहड़ इंसान के लिए रूप में, बल्कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। वो काफ़ी संजीदा और काफ़ी गंभीर एक इंसान थे। इनका जन्म आप सभी को पता होगा कि 4 अगस्त 1929 को खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली, मराठी, गुजराती, असमिया, कन्नड़ा, भोजपुरी, मलयालम और भी कितने ही भाषा में गीत गाए। वे केवल गायक ही नहीं थे, जैसा कि मैंने पहले कहा कि अभिनेता, संगीतकार, गीतकार, निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक भी थे।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर।

उनकी गायकी की सबसे बड़ी विशेषता थी यूडलिंग। ये एक शैली थी जिसने उन्हें अन्य गायकों से अलग पहचान दिलाई। दोस्तों, उन्होंने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, देवानंद और कई अन्य दिग्गज कलाकारों के लिए गीत गाए। उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में चलती का नाम गाड़ी, पड़ोसन, हाफ टिकट और झुमरू शामिल है। उनके लोकप्रिय गीतों में रूप तेरा मस्ताना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, जिन्होंने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई, पल पल दिल के पास, जिंदगी एक सफर है सुहाना और ओ मेरे दिल के चैन, एक लड़की भीगी भागी सी, लंबी फहरिस्त है लिस्ट की, कितना बताऊं मैं। सुनते रहिए उनके आवाज में एक से बढ़कर एक तराने, ओनली ऑन FM रेनबो, दिल से दिल तक। आपके साथ आपका रेडियो वाला मैं अमर।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
0: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सुविचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और प्रियंका जी ने। लिखते हैं,
2: कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है लेकिन झुकने के बाद भर कर ही बाहर निकलती है। जीवन का गणित भी कुछ ऐसा ही है, जो विनम्रता से झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर और प्रेरणादायी विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर का।
2: और अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़ता बाजार से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। वो लिखते हैं,
0: जय गुरुदेव, जय गुरुकुल, उमंग टीम को पल पल बंदगी, विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी जय जोहार बंदगी जी। उमंग कार्यक्रम है लाखों में एक, आप हमारे गुरु के समान हो, हर सप्ताह नई नई जानकारी हमें सिखलाते हो, अहो भाग्य हमारा। उमंग कार्यक्रम एक पाठशाला है जिसे सुनकर जीने की कला हमें आ जाती है। इस सप्ताह बहुत ही खूबसूरत गीत, कविता, फूलों से नित हंसना सीखो, खेल गीत, भारत प्यारा, टिम टिम तारा आपने सुनाया, ये सभी गीत हमें बहुत पसंद आए। धन्यवाद साहेब जी।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेरणादायक संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है माँ बम्बलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
0: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी।
2: और राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं आज भी करेंगे कि उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए लगातार।
2: जी
0: एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी क्या है हमारी आज की चर्चा का विषय?
2: अजी जी आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित कर रहा है। चलिए मैं श्रोताओं को कुछ संकेत देती हूँ।
0: जी
2: अंदाजा लगाना है कि हम किस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं।
0: जी तो विमलेश जी आपने कहा मैं संकेत देती हूँ तो संकेत दीजिए।

0: मेरे संकेत कुछ प्रश्नों में छिपे हुए हैं। पहला प्रश्न है, श्रोताओं, क्या आपने कभी अपने मोबाइल से कोई प्रश्न पूछा है और देखा है कि तुरंत उत्तर मिल गया? क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर को कोई पोस्टर बनाने की कमांड दी और देखा कि तुरंत आपके लिए पोस्टर बनकर तैयार हो गया? यदि हाँ, तो बताइए कैसे संभव हो पाया।
1: या फिर श्रोताओं, क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भाषा का अनुवाद कुछ ही सेकंड्स में होते देखा है? भला ये कैसे संभव हो जाता है?
0: अजीत जी, यदि हमारे श्रोता मित्रों का ये अंदाजा है कि AI या कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संभव हो पाता है, तो वो एकदम सही है। जी हाँ, हमारी आज की चर्चा का विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बता दें कि इसका आविष्कार अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने 1955 में किया था। लेकिन अजीत जी, एक ये प्रश्न उठता है कि कृत्रिम इंटेलिजेंस क्या है?
1: विमलेश जी, यदि सरल शब्दों में कहें तो AI या कृत्रिम इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर या मशीनों को इस प्रकार से काम करने में सक्षम बनाती है कि वे कुछ हद तक मनुष्यों की तरह सीख सकें,
0: जी,
1: समझ सकें और निर्णय लेकर समस्याओं का समाधान भी कर सकें।
0: जी अजीत जी, आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। आज AI शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, चिकित्सा, विज्ञान और उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में बड़ी उपयोगी सिद्ध हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में AI विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकती है।
1: और तो और, विमलेश जी, इतना ही नहीं, ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकती है।
0: शिक्षा के क्षेत्र में AI विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकता है।
1: और विमलेश जी, इतना ही नहीं, ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकता है।
0: जी।
1: अभ्यास प्रश्न तैयार कर सकता है और नई भाषा सीखने में भी सहायता कर सकता है।
0: जी।
1: इससे सीखना अधिक रोचक और व्यक्तिगत बन जाता है।
0: ये सब बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन श्रोताओं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
1: जी।
0: हर नई तकनीक की तरह AI के साथ भी कुछ चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी चुनौती है गलत या भ्रामक जानकारी।
1: जी।
0: AI कभी कभी ऐसा उत्तर दे सकता है जो सुनने में तो सही लगे लेकिन पूरी तरह से सही न हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी की विश्वसनीय स्रोतों से अवश्य जांच कर लेनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल सही। श्रोताओ, दूसरी एक और बहुत बड़ी चुनौती,
0: जी,
1: वो चुनौती नकल करने की प्रवृत्ति।
0: जी।
1: विद्यार्थी भी कई बार अपना गृह कार्य, प्रोजेक्ट या निबंध पूरी तरह AI से बनवा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत हानिकारक है।
0: जी।
1: क्योंकि इससे उनकी अपनी सोचने, लिखने और समस्या समाधान की क्षमता प्रभावित हो सकती है और आजकल ऐसा होने भी लगा है।
0: तो श्रोता मित्रों, हमें याद रखना चाहिए कि AI सीखने का साधन है, सीखने का विकल्प नहीं।
1: जी।
0: तो अब बात करते हैं कि AI का जिम्मेदारी से उपयोग कैसे करें। सबसे पहली बात, AI का उपयोग सीखने के लिए करें, केवल उत्तर पाने के लिए नहीं। यदि कोई विषय समझ में ना आए तो आप AI से कहें कि वो सरल भाषा में विषय को समझाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समझने के बाद आप उसे अपने शब्दों में लिखें।
1: जी, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें एक और बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि AI से मिली जानकारी का मिलान विश्वसनीय पुस्तकों, शिक्षकों या प्रामाणिक स्रोतों से जरूर करें।
0: जी।
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात, AI पर आश्रित ना हो जाएं।
0: बिल्कुल।
1: अपनी रचनात्मकता को बनाए रखें। चित्र बनाना, कविता लिखना, कहानी गढ़ना और नए विचार सोचना, ये सब मानव की विशेष क्षमताएं हैं।
0: जी हाँ श्रोता मित्रों, AI का उद्देश्य आपकी जगह सोचना नहीं, लेकिन आपको एक बेहतर ढंग से सोचने में सहायता प्रदान करना है।
1: जी।
0: AI हमारी सहायता कर सकता है, लेकिन हमारी कल्पना शक्ति का स्थान नहीं ले सकता। ये सच है कि हर नई तकनीक अपने साथ अवसर भी लाती है और जिम्मेदारी भी।
1: जी हाँ, जैसे एक उदाहरण लीजिए, जिस प्रकार बिजली का सही उपयोग हमारे जीवन को आसान बनाता है।
0: बिल्कुल।
1: और गलत उपयोग नुकसान पहुंचा सकता है।
0: जी।
1: इसी प्रकार AI भी एक बेहद शक्तिशाली साधन है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब हम इसका उपयोग समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करेंगे। आइए हम इस तकनीक से डरे नहीं, बल्कि उसे समझें, उससे सीखें, उसका उपयोग समाज और देश के विकास के लिए करें।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो श्रोताओ, आज का हमारा प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल।

0: वहां आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: और एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है पेड़ की बात।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम महान भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बसु के एक विज्ञान लेख पर आधारित है, जिसमें उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में बड़ी रोचक जानकारी दी है।
0: पेड़ की बात।
2: साथियों नमस्कार, हम सब प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानते हैं। उनका बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। जीव विज्ञान, भौतिकी और वनस्पति विज्ञान में उनकी महारत थी। उन्होंने बांग्ला भाषा में बच्चों के लिए बहुत सी विज्ञान कथाएं और लेख भी लिखे। जगदीश चंद्र बसु ने कई विज्ञान कथाएं लिखी हैं, जिनमें से निरुद्देशेर गोल्पो यानी लापता की कहानी 1896 में लिखी गई और बाद में 1921 में पलटक तूफान यानी भगोड़ा समुद्री तूफान के रूप में प्रकाशित की गई, जो बांग्ला विज्ञान कथा साहित्य की शुरुआती कृतियों में से एक है। उन्हीं विज्ञान लेखों में से एक रोचक लेख है पेड़ की बात। जगदीश चंद्र बसु को बच्चों से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने घर में भी प्रयोगशाला बना रखी थी। छुट्टियों के दिनों में उनके पास बहुत से बच्चे विज्ञान के प्रश्नों के साथ आते रहते थे। एक दिन कुछ बच्चों ने सोचा कि क्यों ना उनके पास चलें? तो आइए दोस्तों, हम भी चलते हैं बच्चों के साथ सर जगदीश चंद्र बसु के पास और सुनते हैं ये विज्ञान वार्तालाप।
3: चलो चलो
4: सर से हम पेड़ पौधों के बारे में पूछेंगे। नमस्कार सर।
5: नमस्कार, और इतने सारे बच्चे। आजा, आजा, आजा। तो अब जरा अपना इंट्रोडक्शन दो।
6: सर मैं इशिता।
7: मैं हूँ चेताली।
8: मैं शुभेंदु।
9: और मेरा नाम है इंदु।
10: और मैं सोमेश।
5: बहुत अच्छा। तो बच्चों ये बताओ कि तुम लोगों का आना कैसे हुआ?
6: सर हम आपसे पेड़ पौधों के बारे में जानना चाहते हैं।
5: देखो, पेड़ बनने की कहानी सबसे पहले शुरू होती है बीज से।
8: जी सर, मैंने अपने खेत में बीज को बोते हुए देखा है। सर फिर क्या होता है?
5: फिर होता यह है बच्चों कि बीज मिट्टी में पड़ा रहता है लंबे समय तक। जैसे ही वर्षा की बूंदें पड़ती हैं और मिट्टी थोड़ी गीली हो जाती है ना, बीज मानो सोचता है।
8: बीज सोचता है? क्या सोचता है?
5: वो सोचता है अब मिट्टी में पड़े रहने का समय नहीं है। उसे लगता है मानो प्रकृति उसे बड़े प्यार से पुकार रही हो। जैसे
11: उठो, उठ जाओ, अब सोने का समय नहीं है। बाहर निकलो, सूर्य को देखो, अपने आसपास देखो, सब कुछ कितना सुंदर है।
6: वाह, कितनी सुंदर बात है।
5: अच्छा एक बहुत मजेदार बात तुम लोगों को बताता हूँ बच्चों। देखो, जब अंकुर फूटेगा और डालियां निकलेंगी तो जड़ हमेशा नीचे की ओर ही जाएगी और तना ऊपर की ओर ही उठेगा। जानते हो, एक बार मैंने एक प्रयोग किया था। एक गमले में क्या था बताओ?
12: पौधा।
5: शाबाश। परीक्षण करने के लिए मैंने कुछ दिनों तक पौधे को उल्टा लटकाए रखा।
12: उल्टा?
5: हाँ उल्टा। और जानते हो क्या हुआ? पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर।
8: फिर क्या हुआ?
5: फिर दो तीन दिनों के बाद मैं क्या देखता हूँ कि उसकी सारी पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। ऐसा लगा जैसे पौधे को भी प्रकृति का ये भेद मालूम हो गया हो। है ना रोचक बात?

0: यह तो बड़ी रोचक बात है सर। सर एक बात बताइए, क्या पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो, हमें जिस प्रकार भोजन की जरूरत होती है ना, हमारे दांत होते हैं, है ना?
2: जी सर।
1: इसलिए हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के दांत नहीं होते, इसलिए वो केवल तरल द्रव

0: जैसे पानी में चीनी डालने पर चीनी घुल जाती है ना?
1: जी सर।
0: वैसे ही मिट्टी में पानी डालने पर उसमें मिट्टी के बहुत से पोषक तत्व घुल जाते हैं। पेड़ पौधे उसी पोषक तत्व को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
1: अच्छा, अब समझ आया।
0: तो अब इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए चलो चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में।
2: जी सर।
3: यहाँ तो कितने सारे पत्ते, बीज, पौधे के तने रखे हुए हैं।
1: अरे कितनी बड़ी प्रयोगशाला है।
4: यहाँ पे तो बहुत तरह के पत्ते हैं।
5: ये तो बहुत सुंदर पत्ते हैं, बिल्कुल हरे हरे।
6: देखो इतना बड़ा पेड़।
7: अरे उधर देखो, सूखे पत्ते भी हैं।
8: अरे यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।
1: और ये मशीन क्या है? चलो चलो सर से पूछते हैं।
0: इसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र, यानी माइक्रोस्कोप।
1: माइक्रोस्कोप।
0: हाँ, अब इसका कमाल देखो। इशिता तुम इधर आओ बेटा। हाँ देखो।
9: जी सर।
0: हाँ देखो, अब मैंने क्या किया कि इस माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर पौधे के इस तने को रखा। हाँ आओ देखो, देखो बेटा देखो, इसमें देखो क्या दिखाई दे रहा है।
5: अरे वाह, मुझे तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नलियां दिखाई पड़ रही है।
0: हाँ शाबाश।
5: हाँ नलियां तो मुझे भी दिखाई पड़ रही है इसमें।
1: मुझे भी देखना है। सर मैं भी देखूं?
0: हाँ आओ आओ आओ,
5: मुझे भी देखना है।
0: देखो क्या दिखाई दिया?
5: इसमें तो बहुत सारी नलियां हैं।
0: शाबाश, बिल्कुल सही, लाखों पाइप हैं।
2: पाइप?
0: हाँ, यानी जड़ मिट्टी से जिस पोषक तत्व को सोखती है ना, वो पोषक तत्व इन्हीं पाइपों के द्वारा पूरे पेड़ तक पहुँचते हैं।
1: अच्छा, तो ये बात है।
0: अब देखो जैसे हमारी नसें होती है ना, बिल्कुल यही बात है।
7: सर पौधे वायु और सूर्य के प्रकाश से भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो कैसे?
0: वृक्ष के पत्ते हवा से आहार यानी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या कभी तुम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से पत्तों को देखा है?
2: नहीं सर।
0: और अब देखते हैं पत्ते को। कौन सा पत्ता लें? ये वाला पत्ता लेते हैं और इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर। हाँ, अब देखो कौन देखेगा सबसे पहले। शुभेंद्र तुम देखो, क्या दिखाई दिया?
7: अरे वाह, कितना अद्भुत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पत्ते में अनगिनत छोटे छोटे मुंह हैं।
0: बिल्कुल ठीक। तो बच्चों, पत्तों के इन्हीं छोटे छोटे मुखों और जड़ों से पेड़ पौधे हवा से नमी ग्रहण करते हैं और सभी पोषक तत्वों को इकट्ठा करके अपना भोजन तैयार करते हैं। और जानते हो इसे क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अच्छा चलो बच्चों, अब एक और प्रयोग करते हैं। तैयार हो तुम लोग सब लोग?
2: जी सर।
0: तो अब सभी लोग बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हो जाओ, ऐसे। हाँ शाबाश। और अब सब लोग एक लंबी सांस लो और अब छोड़ो। अब बच्चों ये बताओ कि तुमने सांस लेते समय क्या लिया और सांस छोड़ते समय क्या छोड़ा? इशिता तुम बताओ।
1: सर टीचर बताती है कि हम सांस लेते समय मुख्य रूप से ऑक्सीजन लेते हैं।
0: शाबाश। और शुभेंदु तुम बताओ, हम सांस छोड़ते समय क्या छोड़ते हैं?
7: सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
0: हाँ।
7: लेकिन सर ये तो जहरीली होती है।
0: बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। देखो बेटा, मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी के सभी सांस लेने वाले जीव जंतु ऐसा ही करते हैं। अच्छा अब जरा सोचो, अगर ये जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो क्या होगा?
1: पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा।
0: सही कहा तुमने, शाबाश। लेकिन बेटा जरा विधाता की करुणा और चमत्कार तो देखो। जो गैस हम जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है।
5: यानी यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो
2: हम भी नहीं होते।
0: शाबाश। तो बताओ बच्चों कैसी लगी आज की बातचीत?
2: बहुत बढ़िया।
0: अब से एक काम जरूर करना।
2: क्या सर?
0: जब भी किसी पेड़ पौधे को देखना

0: ना तो उसे बोलना
1: थैंक यू प्लांट,
2: थैंक यू ट्री।
0: शाबाश।
3: तो साथियों, अब हम किसी भी पेड़ या पौधे को देखकर धन्यवाद तो जरूर कहेंगे, लेकिन सिर्फ धन्यवाद से ही काम नहीं चलेगा। बात तो तब है जब हम सिर्फ धन्यवाद ही ना कहें, बल्कि उनका पूरा ख्याल भी रखें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं।
4: पेड़ की बात। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी की सहायता।

0: एक बालक था, उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी मुझे 5-7 रुपए दे दीजिए।
0: पिताजी ने कहा,
2: 5-7 रुपए? तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे हो?
0: बालक बोला,
1: मुझे इन रुपयों की जरूरत है।

0: पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च करेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वो उसे बुला लाया, फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए। बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी, वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार से बोले,
1: बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था।
0: इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें देश बंधु चितरंजन दास कहने लगे।

अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक संयुक्ता लूदरा और सत्येंद्र वर्मा। कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर। कलाकार नीरज यादव, अर्जुमन अली खां और मिताली। ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साथी की सहायता। CIET NCERT presents English rhymes and songs.
1: Friends, we present to you the song Five Little Ducks.

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु
0: चेतना
1: और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक
1: 107 FM रेनबो दिल से दिल तक के सभी लिसनर्स का, सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती है, इस्तकबाल करती है आपकी आरजे पलक आपके अपने छायालोक में। 7:03 और 21 सेकंड और मैं रहूंगी आपके साथ 9 बजे तक। और आज ट्यूसडे है, यानी कि आज का हमारा सेगमेंट है प्यार भरे नगमे। तो क्यों ना बातें कम और गाने ज्यादा हो। और सबसे पहला गाना अमित त्रिवेदी की आवाज़ में, ये

इंग्लिश में इंग्लिश के इस गीत को स्वानंद किरकिरे ने लिखा और अमित त्रिवेदी ने संगीतबद्ध किया। दोस्तों, इश्क कोई शोर नहीं जो सबको सुनाई दे, ये वो खामोशी है जो रूह तक उतर जाती है। अगला गीत पापा कहते हैं फिल्म से, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ में।

जावेद अख्तर के अल्फाज के साथ राजेश रोशन का संगीत, क्या बात है। तुम्हें चाहना कोई आदत नहीं थी, बस दिल ने एक खूबसूरत गलती कर दी। तुम्हारा नाम लिया तो हवाओं का रंग बदल गया, जैसे किसी दुआ ने खुदा से मिलने का रास्ता पा लिया। ये अगला गीत ओ हमदम सुनिए रे।

के शान, कुणाल और प्रवीण मणि की आवाज़ में आपने सुना साथिया फिल्म से ये गीत। गुलजार ने इसे लिखा, रिया रहमान ने संगीतबद्ध किया। 7:19 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक अपनी आरजे पलक के साथ, ओनली ऑन 107 एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। और आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को हमारा सेगमेंट होता है प्यार भरे नगमे का। जी हाँ, तो प्यार भरे नगमे में आज बहुत सारे नगमे जो है वो रोमांटिक आप सुन पा रहे हैं। और अगला जो गीत आपके सामने वो पेश कर रही हूँ वो है उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ में, कहो ना प्यार है फिल्म से। प्यार की कश्ती में, वैसे दोस्तों प्यार की कश्ती में कोई नक्शा तो होता नहीं, जहाँ दिल साथ हो वहीं किनारा निकल आता है ना।

लिरिक्स सावन कुमार के और संगीत राजेश रोशन का। और अब पहली फिल्म का ये अगला गीत आप सुनेंगे सोनू निगम श्रेया घोषाल की आवाज़ में, गुलजार के अल्फाज।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: प्यार भरे नगमे,

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स और प्रीतम का संगीत, क्या बात है। और एक और गाना आपके सामने पेश करूंगी। जी हाँ, प्यार भरे नगमे आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक के अंतर्गत, और मैं हूँ आपकी आरजे पलक, लेकर आई हूँ ये कार्यक्रम ओनली ऑन 107 एफएम रेनबो। अगला गीत मोहित चौहान, सुजैन डिमेलो की आवाज़ में, रॉक स्टार का ये गीत है, इरशाद कामिल ने लिखा है और एआर रहमान ने संगीतबद्ध किया, क्या बात है।

और अब अगला गीत सुखविंदर सिंह, शेखर रावजियानी और हिमानी कपूर की आवाज में बचना है हसीनों से, अन्विता दत्त गुप्तान ने इसे लिखा और विशाल शेखर ने संगीतबद्ध किया।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: प्यार भरे नगमे,

सुर फिल्म के इस गीत को सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ दी, निदा फाजली ने इसे लिखा और एमएम क्रीम ने संगीतबद्ध किया। 7:52:39 और आप सुन रहे हैं छाया लोक के अंतर्गत प्यार भरे नगमे अपनी आरजे पलक के साथ ओनली ऑन 107 FM रेनबो। और अब इस घंटे का आखिरी गीत आपके सामने पेश करूंगी हरिहरन और अलका याग्निक की आवाज़ में, और ये बेहतरीन प्यार भरा नगमा है फिल्म खामोशी का। और इस गीत के बाद बजे होंगे 8, तब हम लेंगे 2 मिनट का एक न्यूज़ ब्रेक और लौटूंगी मैं एक बार फिर लेकर छाया लोक। तो आपको क्या करना है, कहीं नहीं जाना है, सुनते रहना है, साथ रहना है, क्योंकि इस सेगमेंट के बाद अगले घंटे और भी बेहतरीन गाने आपके सामने मैं पेश करने वाली हूँ। फिलहाल सुनिए हरिहरन अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: 8:03 और न्यूज ब्रेक के इस पार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती है, इस्तकबाल करती है आपकी आरजे पलक आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है छायालोक, और आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक। और दोस्तों, इस सेगमेंट में आज मैं आपकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली हूँ। नॉन फिल्म सॉन्ग्स जो बहुत ही फेमस है, आपने बहुत सुना है अपने 90s में, उन सब को आपके सामने पेश करने वाली हूँ। तो इस एक घंटे में उन सब गानों को फिर से जी लीजिए और इन्जॉय कीजिए। सबसे पहले यूफोरिया का ये गीत पलाश सेन और शुभा मुद्गल की आवाज़ में।

और अब दीवाना एल्बम से सोनू निगम की आवाज में अगला बेहतरीन मैजिकल ट्रैक।

8:23:50 आप सुन रहे हैं छाया लोक अपनी आरजे पलक के साथ ओनली ऑन 107 FM रेनबो दिल से दिल तक. एंड कमिंग अप नेक्स्ट इज मिलिंद इंगले की आवाज में उनका एल्बम सॉन्ग ये है प्रेम. कहीं मत जाइए, सुनते रहिए. आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो दिल से दिल तक.

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

और अब अगला ट्रैक है संयोनी। आई एम श्योर यू ऑल एंजॉइंग दीज सॉन्ग्स और आपकी सारी यादें 90s की जो है वो ताज़ा हो रही है इन एल्बम सॉन्ग्स के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते और सुनते हैं संयोनी ओनली ऑन 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक, म्यूजिकली योर्स।

8:36 एंड आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो म्यूजिकली योर्स में छाया लोक अपनी आरजे पलक के साथ। और आज के स्पेशल सेगमेंट में मैं आपको 90s के एल्बम सॉन्ग्स सुनवा रही हूँ। और

मेरी चुनर उड़ उड़ जाए का टाइटल ट्रैक आपने सुना फाल्गुनी पाठक की आवाज में। 8:48 and 19 seconds आप सुन रहे हैं छायालोक अपनी आरजे पलक के साथ, ओनली ऑन 107 एफएम रेनबो, म्यूजिकली योर्स। और अब लकी अली कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये अगला एल्बम ट्रैक।

8:53 एंड वक्त को अब फिर से वक्त देने का वक्त हो चला है। आपके आरजे पलक के पलक झपकाने का समय हो गया है। मुझे दीजिए इजाजत, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए, साथ रहिए 107 एफएम रेनबो, दिल से दिल तक के। और छायालोक के अंतर्गत आज का हमारा ये आखिरी गीत होगा पल का ये ट्रैक के की आवाज में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रहिए व्यस्त, और सुनते रहिए, साथ रहिए 107 एफएम रेनबो के।